0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रूपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मुंगारु हंगामी ना बेले वीमे गागी ईगा नोंदणी माडिकोळ्ळिरि।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम अवन केंद्र ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.samrakshane.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ।

मुकलिंगीत, साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलीले जमनासाथ, प्रज्योत डीसा, गीत उड़ी उड़ी।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रूपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मुंगारू हंगामी ना बेले वीमे गागी ईगा नोंदणी माडिकोळ्ळिरि।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम वन केंद्र ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ www.samrakshane.karnataka.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ।

लोकलिंगीत, साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलीले जमनासाथ, प्रज्योत डीसा, गीत उड़ी उड़ी।